0: जप जी साहब एकोंकार सतनाम कर्तपुरुष निर्भो निर्वैकामुरित आचिनी सेवां गुरुप्रसाद जाप साध सच गाद सच हेवी सच नानक होसीपी सच सच सच न होवे जे सच्ची लकवार
1: चुपे चुप न होवे जे लाय रहा लिप्तार
0: पकिया पकन अर्थरी जे पाना पुरी अपार
1: सेस्या न पलक होए ता एक न चले नाल
0: केव सचियार होए केव कोरे तूटे पाल
1: हुकम रजाई चरना नानक लिख्या नाल
0: हुकमी हो वानाकार हुकम न कया जाए
1: हुकमी हो वंजी हुकम ले वरियाए
0: हुकमी उत्तम नीच हुकम लिक दुख सुख पाया है
1: एक न हुकमी बख्शीश हुकम सदा भवाये
0: हुकमे अंदर सब को बाहर हुकम न कोए
1: नानक हुकमे जे बुझे ता होवे कह न कोए
0: गावे को तौन होवे किसे तौन
1: गावे को तचन निशान
0: गावे को कन्वरिया यचार
1: गावे को विख्या विकम विचार
0: गावे को सच करे तनखे
1: गावे को जीले फिर दे
0: गावे को जपे तिसे दूर
1: गावे को बहे हरा दूर
0: कतन कति नावे तोट
1: कत कत कति को दिकुट कुट
0: देता ते लेते तक पाए
1: जुगा जुगंतर काई काई
0: हुकमी हुकम चलाए राहो
1: नानक विसे वे परवाओ
0: सच साहेब सच नाय पाक्य पाव पार
1: आके मंगे ते इते दात करे दाता
0: फेके आके रखिए चित से तृपा

0: की सक्षणी
1: वरकते पूजाए
0: सबना जिया का एकताता समय विसरना चाहे
1: चचुकचारे अर्जा होर न सुनी होए
0: नवखंड विच जानिए नल चले सब कोए
1: चंग नाव रखाए के जस कर चकले
0: जेत सुनर ना आवे तब पत न बचे के
1: कीता अंदर कीता का दोषी दोष त्रे
0: नानक निर्गुण गुण करे किन पांति आगंदे
1: तेहा कोई न सुजे जतिस कुन कोए करे
0: सुनिया सिर फिर सुनात
1: सुनिए तर था लका
0: सुनिए दीपलो आपता
1: सुनिए तो न सके का
0: नानक पगता सरावगास
1: सुनिए दू पाप का ना
0: सुनिए ईश्वर पमा इंदा
1: सुनिए मोत सलामंद
0: सुनिए चोच कतन पे
1: सुनिए शत सिमरत वेद
0: नानक पगता सरावगास
1: सुनिए दू पाप का ना
0: सुनिए ससंतो क्यान
1: सुनिए अत्सत का इश्नान
0: सुनिए पर पापा पे माना
1: सुनिए लगे सहेश्तियन
0: नानक पगता सरावगास
1: सुनिए दू पाप का ना
0: सुनिए सरागुना के का
1: सुनिए शिपी पतिशाओ
0: सुनिए अंधे पावे राहु
1: सुनिए हाथों वे अस्काओ
0: नानक पगता सरावगास
1: सुनिए दू पाप का ना
0: अमन्ने की गत कही ना जाए
1: जेको कहे कच्चे पछताए
0: कागर कलम न लिखना हार
1: मने कव करम विचार
0: आसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जने मन कोए
0: मन ने सुर होवे मन बुद्ध
1: मने सगवन राखे सुत
0: मने मोचो तो न काए
1: मने जम के सत न जाए
0: आसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जने मन कोए
0: मने मागे टाक न पाए
1: मने पत्थियो पर गचाए
0: मने मगन चले पांत
1: मने धर्म सती संबंध
0: आसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जने मन कोए
0: मने पावे मुख द्वार
1: मने परवारे सतार
0: मने तरे तारे
1: मने ननक नाविक
0: आसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जाने मन कोए
0: पांच प्रवांग पांच प्रदान
1: पंचे पावे तिरके मन
0: पंचे सोहे तारा जान
1: पंचे का गुरे त्यान
0: जेको कहे कर विचार
1: करत के करने नाए समान
0: तावल तरम दिया कपूत
1: संतोक तरम किया किसुत
0: जेको पुजे हवे सचियार
1: तले ऊपर के तवर
0: दर्जी होर परे होर होर
1: तीस्ते वर करे कमजोर
0: जिया चातरंगा के नाप
1: सवना लिखिया बुरी कलाम
0: ए हो देखा लिख जाने खोए
1: लेखा लिखिया केता होए
0: केता तान साले रूप
1: केते तचने कुंकूत
0: कीता पसाओ एको कवाओ
1: तीस्ते होए लगतारियाओ
0: खुदरट कवं कहा विचार
1: न चावा एक वार
0: जो तट पावे साये पलिका
1: तू सदा सलामन निरंकार
0: असंक चाप असंक पाओ
1: असंक पूजा संक तप्ताओ
0: असंक करांतमक वेत पाट
1: असंक जोग मुराय उदास
0: असंक पग कुंग्यान विचार
1: असंक सत्य असंक ततार
0: असंक सुरम पाक सार
1: असंक मूलिव लाए तार
0: कुदित तकवंगा विचार
1: परिन चावा एक वार
0: ज्योतिर पावे साई पलिकार
1: तू सदा सलामन निरंकार
0: असंख मूर्ख अंधकोर
1: असंख जोर हराम मकोर
0: असंख अमर कर चाहे जोर
1: असंख अल्प हत्या कमाए
0: असंख पापी पाप का चाहे
1: असंख कुरियर कुरे फिराए
0: असंख मलेच पल पाक खाए
1: असंख दिन दासी करे वार
0: नानक नीच कहे विचार
1: परिन जावा एक वार
0: ज्योतिर पावे साई
1: तू सदा सलामन निरंकार
0: संक नाव संक ताव
1: अगम अगम संकलो
0: संक कहे सिर पार होए
1: आखरी नाम करे सला
0: आखरी ज्ञान की कुंगा
1: आखरे लकम बोलम बान
0: आखरे शीर्षन जो

0: लेमुकर पाए
1: केते मूर्ख काहे काहे
0: केत्या दुपुक सदमार
1: ऐबे तात तेरी तातार
0: बंदक लासी बाने होए
1: और आक न सके कोए
0: चेको काहे अकन पाए
1: ओ जाने जित्या मोहे काए
0: आपे जाने आपे ते
1: आके सब के
0: जिसनो बख्शे सफत सलाम
1: नानक पात साई।

0: स्कंद से निरंकार
1: कर विवेक नर नहा
0: तीते खन मल दर बर बना
1: जेक कथे था अंत न अंत
0: तीते लो आकार
1: जिव जिव हुकम ते वे तिव कार
0: जीविका से कर विचार
1: नानक कथन कट सार
0: जात पहार दिर सुनियार
1: रण मत वेद हथियार
0: बोकला कंतपताओ
1: पंडप अमृत तटाल
0: गरीय शव सक्षी तकसाल
1: जिनक नर करम तिनकार
0: नानक नदरी नदर नहार
1: श्लोक
0: पवन गुरु पा

सौ पावे सरा सिवर सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन खे मन वसिया भाजे शबर गनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे सच्चा नाम मेरा अतारो सच नाम आदर मेरा जिन भूखा सब गवाया खर शांत सुख मनियाय वसिया जिन इच्छा सा पुजाया सता कुरपान की ता गुर विटहो जिस त्याई बनियाया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो पियारो सच्चा नाम मेरा दारो वाजे पंज शब्द गारस भागे शब्द वाजे खल जित कर दरिया पांच दू तुर वास कीते खाल खंतक मरिया तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक ते सुख होआ तित करिया अनहर तित कर अनहर वाजे वाहेगुरु मुंदावनी मिला पंजवान थाल बिच दिन वस्तु पहियो सासन थोक विचारो अमृत नाम ठाकुर का पहियो जिसका सब सिधारो जेखो खावे जेखो पुंछे तिसका होय उदारो ए वस्त थजनी जाई नित नित रखुर तारो तम संसार चन लग थरिय सब नानक।